0: ओरखा रेडियो हो
1: आजा प्यार की होड़ी
2: दिल बोले तो
3: हाट हाट
4: हमारा यार सौदा सौदा
3: ओहो
1: दोनों डील कर सील
2: टाइट वेरी टाइट